सौमिक शाह के स्वर में संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास ने रची ये हिंदी भक्ति रचना।

कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी ने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंद्रकांत काळे के स्वर में संत एकनाथ की ये भक्ति रचना।

संत एकनाथ की भक्ति रचना अभी आपने सुनी चंद्रकांत काले के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना संत तुलसीदास की, जिसे गाया है आरती ठाकुर ने।

आरती ठाकुर ने गाई संत तुलसीदास की भक्ति रचना, अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत तुकाराम की ये भक्ति रचना, जिसके संगीत कहें तादाद सांदेकर।

संत तुकाराम की ये भक्ति रचना समूह स्वर में अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे दादा चांदेकर। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत भानुदास की ये रचना, जिसे गाया मनोहर सबने और सहकारियों ने।

मनोहर सबनीस और सहकारियों ने गाई संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classic Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में निवेश है राग रामकेली पर ख्याल गायन. कलाकार हैं मधुमिता चट्टोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं समीर आचार्य. हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं कमलाक्षा मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग रामकेली पर ख्याल गायन. कलाकार हैं मधुमिता चट्टोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Ramkeli. Our artist is Madhumita Chattopadhyay. Accompanying her on the tabla is Samir Acharya and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay. Listen now.

0: अभी आप राग रामकेली पर ख्याल गहन सुन रहे थे। कलाकार थी मधुमिता चट्टोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मीर आचार्य और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे कमलाक्षा मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है राग बैरागी वायलिन वादन। कलाकार हैं अभिषेक सिन्हा। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बैरागी पर वायलिन वादन। कलाकार हैं अभिषेक सिन्हा।
1: You were listening to a khayal in the rag Ramkeli. Our artist was Madhumita Chattopadhyay. Accompanying our artist on the tabla was Samir Acharya and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a violin recital. Listen to a violin recital in the rag Bairagi. Our artist is Abhishek Sinha. Listen now to the violin in the rag Bairagi. Our artist, Abhishek Sinha.

0: अभी आप राग बैरागी पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अभिषेक सिन्हा। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a violin recital in the Rag Bairagi. Our artist was Abhishek Sinha. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

Gama gama bani bama bani.

Dani da baba.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आप सुन रहे हैं रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं सितार वादन। प्रारंभ में सुनते हैं जया विश्वास द्वारा प्रस्तुत सितार पर राग नट भैरव। आपके साथ पेपर है रघुराज तुलसी बाग वाले। तो आइए सुनते हैं सितार पर राग नट भैरव, कलाकार जया विश्वास।

श्रोताओ, अभी आपने सुना जया विश्वास द्वारा प्रस्तुत सितार पर राग नट भैरव। आपके साथ तबले पर थे रघुराज तुलसी बाग वाले। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं विजय कुमार संत द्वारा प्रस्तुत सितार पर राग गौड़ सारंग, विलंबित और द्रुतगति ताल में निबद्ध है। तो आइए सुनते हैं सितार पर राग गौड़ सारंग, कलाकार विजय कुमार संत।

अभी आप सुन रहे थे विजय कुमार संत द्वारा प्रस्तुत सितार पर राग गौड़ सारंग, और अब अंत में सुनते हैं विजय कुमार संत द्वारा प्रस्तुत सितार पर पीलू धुन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं विकास पुरंदरे, तो आइए सुनते हैं विजय कुमार संत द्वारा प्रस्तुत सितार पर पीलू धुन।

अर्थ है सितार पर पीलू धुन का अर्थ है विजय कुमार संत। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे विकास पुरंदरे। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सितार वादन। में आप सुन रहे थे जया विश्वास द्वारा प्रस्तुत सितार पर राग नट भैरव और अंत में आपने सुना विजय कुमार संत द्वारा प्रस्तुत सितार पर राग गौरंग और पीलू धुन। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित अभय नारायण मल्लिक का गाया राग अहीर भैरव. चौताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल हैं प्रातः समय श्याम सुंदर को रूप निहारत. पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Pandit Abhay Narayan Malik. First listen to Rag Ahir Bhairav. The alap is followed by Dhrupad, which is set to Chautal. The words are Pratah Samay Shyam Sundar Ko Roop Niharat. He is accompanied by Shri Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj.

Na na na na di da da da na na di da.

0: अभी आप पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग अहीर भैरव सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग तोड़ी। बोल हैं परी आली री। पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित अभय नारायण मलिक। नाउ लिसन टू राग तोड़ी। द आलाप इज फॉलोड बाय धमार। द वर्ड्स आर परी आली री। He is accompanied by Shri Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj.

在那那里

0: अभी आप पंडित भय नारायण मलिक का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी मोहन श्याम शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग तोड़ी बाय पंडित अभय नारायण मलिक। ही वाज अकंपनीड बाय श्री मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है वीणा मुरडूर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग विभास, सुनते हैं विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है ए हो नरहर नारायण, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है छांडो कृष्ण जुगल बैया। सात संगत तबला सचिन राजोपाध्ये, हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे।

थे वीणा मुरुडू द्वारा प्रस्तुत राग बिभास। आपके साथ तबले पर थे सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं वीणा मुरुडू द्वारा प्रस्तुत राग भीम पलास। विलंबित छपताल में निबद्ध रचना के बोल है सोही रसना जोगी। और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है वीरज में धूम मचायो श्याम। आपके साथ तबले पर है सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर है उपेंद्र सहस्रबुद्धे।

वीणा मुरडू द्वारा प्रस्तुत राग भीम पलास। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सचिन राजोपाध्य, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ठुमरी और दादरा. कलाकार हैं अवंती भट्टाचार्य. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी. अवंती भट्टाचार्य अपने गायन का आरंभ खमास ठुमरी से कर रही हैं. तो आइए सुनते हैं ये खमास ठुमरी. कलाकार अवंती भट्टाचार्य.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani vocal recitals followed by a Hindustani instrumental recital. Listen to a Khamaj Thumri followed by a Bhairabi Dadra. Our artist this evening is Avanti Bhattacharya. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy and on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to Khamaj Thumri, our artist, Avanti Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये खमास ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थी अवंती भट्टाचार्य। अवंती भट्टाचार्य अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रही है भैरवी दादरा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये भैरवी दादरा, कलाकार अवंती भट्टाचार्य।
1: यू वर लिसनिंग टू खमाज ठुमरी। Our artist was Avanti Bhattacharya. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy and on the harmonium was Sanatan Goswami. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. We now present Bhairavi Dadra. Our artist is Avanti Bhattacharya. Accompanying her is Tarun Roy on the tabla and Sanatan Goswami on the harmonium. Listen now to Bhairavi Dadra, our artist, Avanti Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप भैरवी दादरा सुन रहे थे। आज की कलाकार थी अवंती भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विष्णु ताल और धमार ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं पंडित सोहन लाल मिश्र। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। पंडित सोहन लाल मिश्र अपने तबला वादन का आरंभ विष्णु ताल से कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं विष्णु ताल में तबला वादन, कलाकार पंडित सोहन लाल मिश्र।
1: यू आर लिसनिंग टू भैरवी दादरा। आवर आर्टिस्ट वॉज अवंती भट्टाचार्य। Accompanying her was Tarun Roy on the tabla and Sanatan Goswami on the harmonium. Continuing the concert, we now present an instrumental recital. Listen to a tabla recital in Bishnu Tal. This will be followed by a dhamar. Our artist is Pandit Sohan Lal Mishra. Accompanying our artist is Sanatan Goswami on the harmonium. Listen now to the tabla in Vishnu Tal. Our artist is Pandit Sohan Lal Mishra.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप विष्णुताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित सोहनलाल मिश्र। पंडित सोहनलाल मिश्र अपने तबला वादन का समापन धमार ताल से कर रहे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है धमार ताल में तबला वादन, कलाकार पंडित सोहनलाल मिश्र।
1: यू आर लिसनिंग टू द तबला इन विष्णुताल। Our artist was Pandit Sohanlal Mishra. Accompanying our artist is Sanatan Goswami on the harmonium. Listen now to Adhamar Tal. Our artist is Pandit Sohanlal Mishra.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप धमार ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित सोहन लाल मिश्र। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Dhamar Taal. Our artist was Pandit Sohan Lal Mishra. Accompanying our artist was Sanatan Goswami on the harmonium. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार है सूर्य शंकर अवस्थी. राग है सावनी नट. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है सब मिल गाओ. द्रुत ख्याल तीन ताल निबद्ध है जिसके बोल हैं आज सब मिल मंगल गाओ. संगत कलाकार हैं तबले पर स्माइल दद्दू खां, सारंगी पर समत खां. दिस रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी. दिस रेंडेशन कमेंस विद अ राग सावनी नट. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय स्माइल दद्दू खां on the tabla and Samadha on the sarangi.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं सुरेंद्र शंकर अवस्थी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे सुरेंद्र शंकर अवस्थी से राग छाया नट। एक ताल में निबद्ध विलंबित ख्याल के बोल हैं आज बधावा गाओ। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं झनन झनन झन झनन बाजे बिछुआ। कंटिन्यूइंग वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। यू विल लिसन राग छाया नट।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थे सुरेंद्र शंकर अवस्थी। संगत कलाकार थे तबले पर यदुनंदन गोस्वामी और सारंगी पर समत खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। द अकम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय यदुनंदन गोस्वामी ऑन द तबला एंड समत खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्री रामाश्रय झा का ख्याल गायन. आइए इनसे सुनते हैं राग देवगिरी बिलावल. विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिनके बोल हैं ए बना ब्याहन आया, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है जिनके बोल हैं दिन गिन देरे बमना. तबला संगत की है पंकज कुमार श्रीवास्तव ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने.

खूबसूरत भारतीय संगीत। ये था राग देवगिरी विलावल। और आइए अब सुनते हैं राग अरुण मल्हार। विलंबित रचना धीमा तीन ताल में निबद्ध है, जिनके बोल हैं कह न गए सैया। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिनके बोल हैं बैरन भई रुत बरखा एरी सखी। कलाकार हैं श्री रामाश्रय झा।

ये था राग अरुण मल्हार। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं राग झांझ मल्हार। विलंबित रचना मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है, जिनके बोल हैं पठाई न पतिया पियरवा। कलाकार हैं श्री रामेश्वर झा। आपके साथ तबले पर संगत की है पंकज कुमार श्रीवास्तव ने और हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान ने।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामाश्रय झा का गाया राग झांज मल्हार। आपके साथ तबले पर संगत की थी पंकज कुमार श्रीवास्तव ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने। रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित निर्माल्य डे का गायन. इनका गाया राग शुद्ध कल्याण पहले प्रस्तुत है. चौताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल हैं अल्लाह साहेब. पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Pandit Nirmalya Day. He is accompanied by Mohan Shyam Sharma

0: अभी आप पंडित निर्माल्य डे का गाया राग शुद्ध कल्याण सुन रहे थे और प्रस्तुत है राग अडाना। पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित निर्माल्य डे। नाउ लिसन टू राग अडाना इज अकंपनीड बाय मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज।

0: अभी आप पंडित निर्माल्य डे का गाया राग अडाना सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी मोहन श्याम शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग अडाना बाय पंडित निर्माल्य डे। दिस प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भजन और श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं आनंदिता सरकार, अनिरुद्ध नाथ, अनुराधा चक्रवर्ती और तिमिर घोष। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मीरा के इस भजन से, जिसे गाया है आनंदिता सरकार ने। तो आइए सुनते हैं मीरा का ये भजन, कलाकार आनंदिता सरकार।
2: This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. This evening we present devotional songs. We begin the program with a Meera Bhajan. Our artist is Anindita Sarkar.

0: अभी आप मीरा का ये भजन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी आनंदिता सरकार। आइए अब आपको सुनवाते हैं मीरा का ही एक और भजन। कलाकार हैं अनिरुद्ध नाथ। तो आइए सुनते हैं मीरा का ये भजन अनिरुद्ध नाथ की आवाज में।
1: यू वर लिसनिंग टू मीरा भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज आनंदिता सरकार। This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Listen now to Ameera Bhajan by our artist Aniruddha Nath.